Ah!

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी

见。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप दादा अंडरलाइन कर माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया, कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो माया के भी अंत तो होनी है। लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पाँव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना बिट नहीं जाए, कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो। हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी कभी लिफ्ट बन जाए, ये हो ये खड़े ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये लेवतापन दातापन नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर बाप समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चों से यही चाहते हैं बाप के प्यार का सबूत, समान बनने समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाए। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समृद्ध आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो us।

0: कोई मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से स्वयं के छोटी छोटी बातों से स्वतः मुक्त हो जाए। समय की पुकार सुनो, आत्माओं की पुकार सुनो। सुनने आती है पुकार कि नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप मिलाया स्वरूप।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो, निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Jack।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ के अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप रूहानी

संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहते, इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं, श्रम स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी पाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सारा परसेंटेज लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है, सब रिजल्ट लिखेंगे। सारा परसेंटेज लिखना बेटी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज, क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

baby.

उसमें चेहरे में खुशी होनी चाहिए, किसी न किसी प्रकार की थकावट कोई न कोई बात का अलबेलापन। जब करना ही है तो खुशी से कर।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

状況。

Hilano. Goodbye.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: It's

0: बनेंगे, कौन बनेगा? अच्छा, ओ बाप दादा, माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? पसंद है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अलग अलग शरारत करती हो ना उसमें थक जाती हो। आज मन सागा किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, थक जाते हो। एक ही पुशारत करो साखी का तख्त नहीं छोड़ना और कुछ ने मां तख्त नशी साखी बन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर तख्त नशीन हो। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेंगे, नीचे दबी रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। और तब कोई को भी दबा दो तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना अंदर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान, न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह इसी को ही जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते, कमल आसन धारी दिखाते। तो आप सभी बच्चों को भी संगम परी जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनई सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा

स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण की बहुत आगे रखेगी।

स्टाफ ना की बात दूसरी थी, लेकिन इस समय प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा को तो जल के आएंगे, सेवादारी को जलो और कोई सेवा।

सुख क्या

this one.

0: उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया लेकिन दिया किसको चांस, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे लंबे नहीं चलो, ठीक है हो गया दिन बहुत सोचो, हिसाब किताब कच्चो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी अपने अंदर चेक करो, मेरे वृद्धि में किसी आत्मा के पृथ्वी कोई
2: फैला
1: जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबर वार तो है ही ना। तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना। आप सब जज बन गए हो एक दो के। बाप भी तो देख रहा है ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष
2: से वायुमंडल बनता।
1: जल्दी पाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपने वृत्ति को अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेज फुल भले बनो, लेकिन अपने मन में धारण नहीं करो, नेगेटिव का अर्थ है किचरा, अभी अभी वृद्धि पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया वाणी से परिवर्तन, सिक्का से परिवर्तन बहुत धीमे गति से होता है लेकिन बहुत धीमे गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Let's see.

Siempre.

है आगे बढ़े।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। Rem

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू करेंगे, तब साक्षात्कार शुरू।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे अभी सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रही है, ऐसे ही सदा रहते हैं। कोई भी बात खुशी

pista da renga. Voado, não. Sabeu, Tanate. Vedi, adattivo.

Ezeitera Renga. Canto el ao. Renga. Renga. O sapte que

خوش مزاج چهره ایسے

मुश्किल रहता चेहरा अच्छा लगेगा। तो आज से सभी बच्चे सिर्फ जोर नहीं, सभी बच्चे अपने दिल में प्रॉमिस करो सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश

خوشی کی کمال سنائی.

a monkey.

पसंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
4: जी। बच्ची को चक्कर लगाए तो कहाँ कहाँ रही है, लेकिन बाप दादा Love.

shit.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्यवन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे
2: Saka

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: भोजपुरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी देनी, ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात। सीट पर रहना मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सदा सेट रहना, बोलना नहीं। स्वमान है ना ये, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा

0: कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी आप सभी भी अपना चित्र

अभी

सभी ट्रेलर।

Puppy.

Tränen.

रचना इस फिरके के चर में बैठी।

बेफिक्र बादशाह सारा

See.

0: हमारी आत्मा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, ये तो क्यों कब बाप दादा देख।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान, कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ नहीं। अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पीठे पीठे बच्चों को नमस्ते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण ये होता है, समृद्धि स्वरूप नहीं बने हो, सोचते हो
2: स्वरूप सोचने वाला नहीं, स्वरूप।

0: स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मुहूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है।
1: सबसे

Echt?

Yoga.

साथ रहने से।

sick.

Ese pavote.

0: Vete, barbar. Puchéllate. Orcoí que pichitra. Ese.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स बननी है, इसीलिए टीचर्स में सत में बिठे। नौकरी नौकरी करनी भी पड़ती है, तो भी बाप दादा कहते हैं अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है कुमारियों को तो भी

0: सेवा करनी है, ऐसे ही रहना नहीं है। सेवा का अभ्यास करना है, तो थोड़ा ही हिसाब किताब पूरा करके, अगर आवश्यक हिसाब है, चल नहीं सकते हैं इसलिए सेवा करते हैं, तो फेल है। सचमुच कोई कारण है, लेकिन कईयों की दिल भी है। शनिवार और इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो, सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्विसेबल बनने के कारण आई हूं। प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेगी ना, मजा आ जाएगा ना, तो आप पे भी कोई बहाना बना के अपने को चुरा सके। कुमारिया चतुर होती है, भोली वाली नहीं होती। इसीलिए कुमारिया अर्थात स्व उन्नति में हर समय कदम उठाती रहे। सिर्फ नौकरी नहीं, स्वोन्नति में अपने सरकमटेंस अनुसार कदम आगे बढ़ाती रहे। ऐसे नहीं बस चल रही है, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे कुछ सोच नहीं। कुमारी अभी तो कुमारी भी ब्रह्मा कुमारी है ना, सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी वो जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो देखेंगे बाप दादा और योग्य टीचर बनेंगी। हाँ तो रहो, टेस्ट होने वाली, सोच के हाथ उठाओ। अच्छा, इंग्लिश नहीं जानते, सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाले, निर्विघ्न तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं। अभी हैंड्स के कमी है, बाप दादा सभी को कह रहे हैं, कुमारियों मददगार बनेगी ना, हाथ उठाओ जो मददगार बनेगी। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ, निर्विघ्न मददगार, निर्विघ्न। फिर
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय छोटू।

si Kobe Bensky. Kam se kam bata do pare. Ke hum sab ka baap aaye. अचानक आना है, पता के नहीं आएगा, अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। अचानक कुछ भी खिटखिट शुरू हो सकती है।
क्योंकि अच्छा

0: के अपने एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

kesempuran Raj Mejane. Ja Peace.

अवस्था के अनुभवी बनेंगे।

0: शरारती बच्चों को पहुंचेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं, गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है, तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता है। गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा उसे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, जगदम्बा माँ का मुस्कुराना, अपने दादी का मुस्कुराना, याद है ना? डबल फॉरेनर्स को भी

0: हंसो नहीं मुस्कुराओ, जोर से हंसना नहीं मुस्कुराना, क्योंकि बाप दादा को अभी दीवार पर शरद चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा के साथ ही पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है? लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों? कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: triste panca अनुभव करा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मालिक बन के ऑर्डर करो। जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Papá.

अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो रे स्वामी।

0: Tinoco. Up. Sakash tingi. वो ही आपके भगत बने।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संतुष्ट।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Scheiße.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की, सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त कोई भी कार्य में आऊं, बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला आप ही चलाएंगा, ये निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावना
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

sei scaro.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज देते। अगर मनन करो को बिसी

Don't.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाते हैं ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देख तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्ति। बच्चों को इस समय बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Madrid.

समय नहीं होगा, अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की बात रहा। Peace.

Adet.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे, निकल आएंगे 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे ब्रह्मा

piedra, nothing. Atmak piedra.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी सम्मान संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कोर का गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई कोई इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ

ship pull up quickly. A ship vibration quickly. A ship jalan quickly. To up hook on. Apka occupation kya hai? विश्व परिवर्तक हो सभी विश्व परिवर्तक है। धंधा आपका क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, चलन दिखाई, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट दो। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वो ही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी सी।

比我们下面ऐसे शब्द बोलो सा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Christian.

Is it?

love.

coucher.

Cream.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं जिसको आज आप मेरा कहती हो? वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे कहते हो। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और क्या जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार।
2: संस्कार नहीं है ना? तो अभी ये

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
1: अभी सबकी बातें कहाँ गई?

समस्या ऐसी थी।

0: समझ लेता नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हूं। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है। विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में संबंध संपर्क

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी अपन ने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। नहीं हो, कहते हैं नहीं हो, लेकिन होता रहता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कारण ये है। जैसे देखो रावण को मारते भी है, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते, जलाते हैं, और जला के फिर हड्डियां जो है वो आजकल तो नदी में डाल देते। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समापति होती है। तो आप क्या करते हो, ज्ञान के पॉइंट्स से, धारणा के पॉइंट्स से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, और फिर जो कुछ हड्डियां बच जाती है ना बात की, वो ज्ञान सागर बाप के अर्पण कर दो। तीन काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पड़ी, दसवारी मुरली पड़ी तो भी फिर आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में चलाया नहीं, स्वाह नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी पाप सागर में डाल समापन। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा हर बच्चे को व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में पाप के साथ नहीं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत और मंगोत्सव मास्टर दाता हो, जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे सने ले जाए चाहे सहयोग ले जाए चाहे हिम्मत ले जाए चाहे वो मांग ले जाए, कुछ न कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे। वैसे तो सभी का काम ये है, कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए, चलो दृष्टि का सने ले जाए, आवश्यकता भी नहीं रहती है। लेकिन जो आया वो गया कैसे,

विश्व में

0: Vicky Bramar. Jo aprenc a bromar com a art. Com a ari, se m'esté. On go ese. Se va me pesiren.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप। Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मत रख।

Peace.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जीवन की मोट सदा केयरफुल और केयरफुल मोट बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो। सबको समान बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक बात, बाप दादा ने मैं चारटी में देखी, मैं चारटी, मैं नारचनी में चारटी। Suck.

Creepy. Baby.

sempre me teria que roubar. Damn.

Sam nenek.

क्योंकि लक्ष्य रखा है ना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज

Oh, awesome.

0: बीच में करते जाना, तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देंगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कहीं कहते हैं कि योग क्या, बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। कहेंगे ज्ञान यूज करते हो अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझता जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये ज्ञान की निशानी। और योगी की निशानी है कि सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा क्लियर और धारणा स्वरूप की निशानी है, सदा स्वयं भी लाइट। कितने भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मुहूर्त सदा डबल लाइट, चाहे मेला हो चाहे जमेला, दोनों में डबल लाइट। और सेवादारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो, कहने में तो सभी कहते हो ना कि चार सब्जेक्ट के काटली स्टूडेंट है ना, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: परसेंटेज रही हुई है, अशुद्ध नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे वो माइक माना जिसके आवाज में ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है, चाहे प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसे मेरी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Kessel.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

chấp chạy, chế sĩ chạy, phê sĩ. Jesse J. Rolling Power.

0: है, संस्कार मेरे है, बुद्धि मेरी है, तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नंबर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: से देखते हैं ऐसे आपको चेतन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो।

विश्व के आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व के आत्माओं को see.

सुनने आता है, आता है सुनने के नहीं? कोई भी धर्म की आत्मा है, जब उनसे मिलते हो ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की डाल डालिया है, सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कलप फिरके का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका कहाँ स्थान है? जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। जानते हो ना, इसे नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से स्मृति से वृत्ति से दृष्टि से मिलते हो, उन्हों को भी सेवा

0: ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है नशा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांग। जन्म में भी

तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते। चलो परवस आत्माओं को अगर थोड़ा सा मास्टर सागर हो कि नहीं हो ना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का दिन दृढ़ता का दिन मनाओ। Awesome.

起来。

你们请。

Shit.

Bye.

supposed to

सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं।

संकल्प सामने लाना, और रोज अमृत

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई नैन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sons.

Sunscreen.

banana.

comme sortir.

Vielleicht

生活。

Marco.

0: अनुभवनी चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

corazón que hacia ti. Bate con si bate. Psst.

मेरा नहीं कह सकते। जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार।

श्रेष्ठ आत्माओं के पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार तो मत

0: drinking some ever. सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार मान बन जाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दुनिया के हालतों को देखते हुए अब अपने I'm not afraid to die।

ఇష్ట సంకల్లం ద్వారా మనసా శక్తి ద్వారా Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी जयते हैं, अज्ञानी भी जयते हैं कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। आप बच्चों पे तो संकल्प को पूरा संकल्प से

Y aquí es que, bravo.

0: दृढ़ संकल्प के कर तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता। ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, हर बच्चे

संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना

अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। Awesome.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Stop it.

Es ist

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

0: बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प सारे कल्प में नजदीक रहने वाले हो, देख रहे हो अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले सभी है, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे हो फिराओ जड़ ese fiti porak bucane yoti jese ap buca atma oki fiti porak buca oti
1: रहता है।
0: 나샤오가 로아니 나샤 쿠시오키 샥티샤리 바네게 이트나 하이스트 아트마 바네
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते हो, जो अपरत वेला रोज सरो

कोशिश अच्छी कर रहे हो, अमृत वेले को महत्व देते हो, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, उसमें जरूरी

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी चांस लेती है। खुशी नहीं कमाना, माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर दे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: बशारत में थकना नहीं, कोई भी छोटी मोटी बाधा आती है मदद लो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर, इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी कर सकते हो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अपोजिशन तो होगी क्योंकि अपोजिशन ही पोजिशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई हुई ना, और पोजिशन किसने नंबर वन पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से। इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रीस करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। मन को सुनने के बजाय अंतर्मुखी रखो। समझा?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सिर्फ प्यारा नहीं,

सुनते रहिए शिवा रेडियो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा, कोई थे क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप। कुछ कमी दिखाई दी, पुरुषार्थ करते हैं बाप दादा ने, फिर भी मुबारक दी जो पुरुषार्थ ऐसा

Tristé, Swarovski, jste

0: Rinpoche. Light my troop, maybe. Bet the Nani Hobby.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फिक्र का है था पापा बैठ,
2: कारण क्या है, बेफिक्र क्यों है,
3: कल क्या है, ये फिक्र क्यों है।
4: दिल बड़ी है
5: बेफिक्र क्यों है, क्योंकि दिल बड़ी है।
2: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता
1: है। तो दिल बड़ी कैसे हुई है?
4: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्थिति को जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रही अभी लास्ट समय को सोचते हो लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में फैमिली लाइफ वालों आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पर्चा तो बनती जाएगी साधारण पर्चा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बनो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों भाव से प्यार, तो कभी अपने को निराकार भाव से

0: se piare për mamap ne karam sëm kia ne met bëna lekin kitëna poç ta për mamap ki u për ap koj ke u për itëna poç ne je he koj për mamap se zjede kiske u për poç e heq me vari वो हाथ उठाओ कोई नहीं उठाता कोई नहीं उठाता तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार तो कभी फरिश्ता रूप में रहो कभी निराकार स्थिति में रहो ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कहके ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ ये कर सकते हो कि मुश्किल है जो कर सकती है बीच बीच में ऐसी करें जो लगातार हो जाए ये अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो कम से कम सारे दिन में 12 वारी फरिश्ता बनो 12 वारी निराकार स्थिति में स्थित रहो ये कर सकते हो हाथ उठाओ कर सकते हो मुश्किल नहीं है ना सहज है ना सहज है सहज में हाथ उठाओ सहज है अच्छा करना है ये पक्का करो फिर तो जो लक्ष्य रखे है ना इस सीजन के अंत तक परिवर्तन हो सकता है अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा ठीक है ना हो सकता है हाथ उठाओ हो सकता है Yeah. 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे है, और 24 बार करना नींद, नींद के टाइम नींद भले करो। बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो लेकिन दिन में भरा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अबे बाप दादा, यही हर बच्चे से चाहता है।

क्या हर एक बच्चा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पांडवों का गायन किया पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे, साथ भी रहे साथी भी रहे, इसीलिए पांडवों का टाइटल क्या है, विजयी पांडव। विजय हो गई ना पांडवों की, कारण परमात्म साथ और साथी। इसी में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में साथी रहो। पसंद है साथ रहेंगे साथी रहेंगे, माया का दरवाजा बंद,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाए, सभी

Bubbles.

सबसे बड़े थे बड़ी, स्मृति स्वरूप रहना इसको।

akarom kiszömörti raktél. Osszorom.

इसकी और आवश्यकता क्यों का अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी स्वरूप

शरद में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा, अनुभव किया।

0: इस अनुभव के आधार टीका अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समाई हुई रहती है। उसकी शिकिल चलन सेवा कर
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: होली मनाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना। जैसे बाप वैसे बच्चे। अगर मानो आपका कोई संस्कार जो चला नहीं है, इमर्ज हो जाता है तो अच्छा लगता है। संकल्प आता है ना कि अभी दीवार संस्कार को मारा है तो मरा हुआ कभी जान फिर से आ जाती, लेकिन जला दो तो फिर कभी नहीं है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

और खराब चीज अगर मन में है

Seemann. Yes.

सिद्धि मिलती है। जो कई बंधनों से

creepy Batman. Sarabi. Moccasin. Legend.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Smeku. Avko Samiplan. Har ek isme kya karna hai? Har ek apne rahe hue sanskaron ka sanskar kar lo. Samay samay baje. समय को समीप लाने का यही तरीका है जो विघ्न डाल रहा है। रहे हुए संस्कार
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर पावर

Matthias Rapp.

вас. Потемок.

baby. हर एक बच्चे के लिए छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रही जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया है ऐसे चारों

Shh.

0: cheated on me. What done?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है? आत्मा है, नंबर वन आत्मा है तो है। स्वयं बच्चों के याद के पाप रह ही नहीं सकता।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुना है मैंने ये किया, मैं ये कर सकता, अपमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं मक बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को क्यों ढूंढा?

0: महीन में बन यही बाप कहते हैं आज के जन्म दिन पर बाप को सौगात दे दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Este ti ya es.

così bella a sua mano. Ci spacco. See?

Listen up.